अच्छा संबंध नहीं पड़ता लेकिन वैशाख मास के तीसरे से इस तरह पर 13 मई संबंध

0: ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। शिखर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफा किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।

स्पीडो से बिजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रही थी। विधानसभा में अब टीडीपी के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड़ापड़ी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता किया है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, मोटरखानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं।

मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट 180 रन। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जाए। तो चिंता करने की बजाय उसमें सुधार कीजिए। जो कुछ बिगड़ गया हो तो घबराए नहीं, क्योंकि उसका भी उद्धार संभव है। विश्वास बनाए रखें। ये था आज का चिंतन।

संपन्न होता है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोखा के अंतर्गत।

होगा। रूलेट से ही ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 बजे

cuts and juicy butt cheeks. रंग का रंग ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11 बजे 12:05 पर जादू की महफिल सजाई जाएगी और सुरीला सफर आप तय करेंगे दोपहर 1 बजे।

Christ and be saved by feet. रंग तरंग इकाई समाप्त सुनेंगे सुबह 11 बजे 12:05 पर जादू की महफिल सजाई जाएगी और सुरीला सफर आप तय करेंगे दोपहर 1 बजे।

30 मिनट पर आप फिल्म के कार्यक्रम सदाबहार नगमे और 3 बजे कार्यक्रम सच्ची सहेली के अंतर्गत इन विषयों पर बातचीत होगी। खाने के लिए जिए या जीने के लिए खाते हैं। साड़ियाँ साड़ियों का संसार जिसके अंतर्गत बात होगी पश्मीना साड़ी की। शब्द हमारे विचार आपके इसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी। आत्मविश्वास की और व्यंजन में भेलपुरी और दाबेली के बारे में बताया जाएगा। पिटारा जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे आज के मेहमान शाम 4 बजे शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे। कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम

से 45 मिनट पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए राग अनुराग। 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक, 8:00

Madame Lefebvre a été un peu plus lourde. Norvégie, quatrième, a suivi. राजी नौ बजकर 30 मिनट पर आज के संकाल कार्यक्रम के जन्म का पक्षी गायक पैरी दयाल पर राजी 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत आने के वंशवर मंदाकिनी तुलसी का चार 10 बजकर 30 मिनट पर सुनिएगा ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण श्रोताओं ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस। इसका आप भाग 183 सुनेंगे।

पिता तथा वनवासी राम लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना की दृष्टि है। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सबके संतोष के लिए जब वे वन को चले तो सीता भी उनके पीछे चल पड़ी। अग्रज के वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण भी अयोध्या

कैकई की कठोरता तथा कुटिलता की भर्त्सना करके भी भरत के हृदय में सुलगती आग शांत नहीं हुई। उधर क्रोधाग्नि में जलते शत्रुघ्न के सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमा कर उसकी कुबड़ फोड़ डाली और झूठी पकड़कर उसे खसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के

0: नमस्कार। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अनूप जरोटा जी। एक बार फिर हम उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है अनूप जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज की इस कड़ी में हम चाहते हैं कि जिसे आपने तालीम ली और जो आपके लिए बहुत प्रिय है, आदरणीय है, वो है आपके पिताजी श्री पुरुषोत्तम दास जरोटा जी। तो आप उनके बारे में बताएं कि उनके जीवन का कौन सा अनमोल दर्शन आपको प्राप्त हुआ।
1: पिताजी बहुत अच्छे शास्त्रीय गायक रहे। उन्होंने बड़े बड़े कलाकारों के साथ म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गाया, बहुत लोगों को संगीत सिखाया, जिसमें मैं भी हूँ। और वो बड़े ही फिट टीचर थे। मुझे याद है कि बचपन में मुझे कमरे में बंद कर देते थे तानपुरा लेके और कहते थे 3 घंटे बाद मैं कमरा खोलूँगा और बाहर से मैं सुन रहा हूँ और सिर्फ सा गाना है, रे तक नहीं पहुँचना। तो 3 घंटे मैं सिर्फ सा गा रहा। दूसरे दिन फिर बंद कर देते थे कि आज तो रे गाना है। तो इस तरह वो उन्होंने गले में एक सिंहासन बना के अपने को स्थापित कर दिया। तो वो सुर जो है वो अपनी जगह बैठ गया। इस तरह से उन्होंने खुद भी रियाज किया था और मुझे भी करवाया। रोज रात जो है वो आईने के सामने करो कि तुमको ऐसा लगे कि कहीं तुम्हारा मुंह बन रहा है या हाथ पर ज्यादा उठा रहे हो, वो सब नहीं होना चाहिए। बहुत प्लेजेंट मुद्रा होनी चाहिए। तो उसका ही कारण है कि मुझे मुद्रा दोष का सामना नहीं करना पड़ा, नहीं तो अक्सर गायन में मुद्रा दोष आ जाते। तो इस तरह की चीज़ें जो उन्होंने सिखाई उसका मुझे बहुत लाभ हुआ है। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही हमेशा। और न जाने कितने उनके भजन हैं जो मैं गाता हूँ और उनको और पॉपुलर करने की कोशिश करता हूँ जो उन्होंने किए हैं।

0: जब पूरे हो जाते थे फिर से साथ में शुरू करा देते थे, तो ये सिलसिला चलता रहता था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब हाँ सूर्य है इसके टिकने लगे हैं, ठीक होने लगा है, उसके बाद फिर कहते थे कि अब और भी कुछ गाँव साथ साथ। लेकिन शुरू में तो उन्होंने इसी तरह से तालीम दी।
1: जी, अगर आपको याद हो तो बंदिश कौन सी सीखी थी पहले?
0: मुझे उन्होंने एक चतुरंग सिखाई थी,

0: करते हैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि उनके गायन की शैली क्या थी और किन राग रागिनियों का वो ज्यादातर प्रयोग करते थे।
1: पिताजी तो बहुत विद्वान थे, तो बहुत से रागों को गाते थे। उनका राग विहार में नकुलझी सुलझाजा बालम संगीत मारते हैं। पंडित जसराज जी बता रहे थे कि उन्होंने मेरे पिताजी को लटुलझी गाते हुए सुना किसी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, और उस दिन से उन्होंने जसराज जी ने राग बिहार गाना शुरू किया। इतना सुंदर बिहार कोई गा सकता है तो मैं भी गाऊंगा, उन्होंने भी गाना शुरू किया। तो पिताजी एक ऐसे गायक थे कि अपने गायन से लोगों को इंस्पायर कर देते थे और लोग गाने लगते थे। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत से रागों को उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो प्रचलित राग नहीं थे उनको भी प्रचलन में लाए।
0: और अब हम चाहते हैं कि पिता पुत्र के बीच एक रिश्ता होता है और गुरु शिष्य के बीच एक रिश्ता होता है, तो उस रिश्ते के बारे में बताइए।
1: मुझे कई बार मेरा गाना सुन के कहते थे कि थोड़ा और रियाज करो, थोड़ी और मेहनत करो, ये जो नाम हो गया है उस चक्कर में मत फंस जाना। लेकिन मुझे भी थोड़ा ये रिग्रेट है, मुझे अफसोस है कि मैं उनसे कुछ 5 साल और सीखना चाहता था, लेकिन मेरा नाम ज़रा जल्दी हो गया। और एक बार नाम हो जाए फिर हम फंस जाते हैं अपने कार्यक्रमों में, सारी दुनिया घूमने में। तो एक ही रिग्रेट मेरे अंदर है कि मेरा नाम थोड़ा जल्दी हो गया, 5 साल बाद हो जाता तो मैं शायद और अच्छा गाता और सीख
0: पाता। हम सब तो मंत्रमुग्ध होते हैं आपकी गायकी से और पिताजी पुरुषोत्तम दास जी की गायकी सुनकर। अब हम चाहते हैं कि पुरुषोत्तम दास जलोटा जी की कोई भजन आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
1: एक उनका भजन बहुत ही सुंदर है, प्रबल प्रेम के पासे पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये भजन बिंदु स्वामी का लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा कि

संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता

Yes, now I'm in.

आवाज में आनंद बस्ती की रचना की धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। आइए अगला गीत सुनते हैं। नगमा फिल्म से ये गीत है संसार प्रीतम की आवाज में, नाजमा का संगीत किया गीत।

0: Geçenlik इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले रिश्ते गीत। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और आवाज लता मंगेशकर की।

चुनाव फिल्म आह से लता मंगेशकर का गाया गीत था, फतेह जयपुरी के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का। श्रोताओं, एक छोटे से अंतराल के बाद हम फिर मिलते हैं।

सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं हुस्न का प्योर फिल्म से संध्या मुखर्जी का गाया गीत, राजा मेहंदी अली खान का लिखा गीत है, बुलो सी रानी का संगीत।

तभी आप सुन रहे थे हिस्से का चोर फिल्म से संध्या मुखर्जी की आवाज में। आलस भरे सुबह जैसे चाय में घुल जाएगी है। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले दूसरे गीत। गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवास। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिछड़े गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं दो बीघा जमीन फिल्म से। शैलेंद्र का लिखा, सलील चौधरी के संगीत से सजा गीत, लता मंगेशकर मन

जी लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की स्वरों में आइए अब आपको सुनवाते हैं टैक्सी ड्राइवर फिल्म से किशोर कुमार और साथियों का गाया गीत। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत है जी परमल का।

सबाब से सिक्किम बदायूनी की रचना की संगीत था नौशाद का और इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीत के कार्यक्रम अभी ही सम्पन्न हुआ।

साथ भोजन लगाना और कार्यक्रम हम सभी के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपको सुनवाती हूँ।

भी स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं मंजिल मंजिल फिल्म से गीत आशा भोसले शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। मजनू सुल्तानपुरी के बोलो को संगीत में ढाला है राहुल देव बर्मन ने।

0: हम 10 साल जयपुर में थिएटर किया और एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का टर्निंग दौर था, टीम का जवाब भी जिसने मुझे उसके चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ साल किससे
0: मेरे पढ़ा जाने की उड़ान बाकी परिंदे में जाना थी और जब जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए कि किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के रहमान

सुनवाते हैं नदीम श्रवण का जीव गुण से सजा गीत। गीतकार है समीर और अनुराधा पोडवाल मनहर उदास। ये आवाजें हैं। फिल्म का नाम है सड़क।

चुनाव फिल्म सड़क से। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म लावा से अगला गीत। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार आजी बर्मन हैं।

में लावा फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे और ये गीत बना कार्यक्रम हम हेराही प्यार की थी आखिरी पेशकश। इसी के साथ कार्यक्रम हम हेराही प्यार की यही संपन्न होता है। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरी।

विस्तार से तमिलनाडु में जोसफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिल का वेत्री कड़गम की सरकार को आज अपना हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में अब टीवी के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।

अमित विजय ने राज्य सरकार में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव शामिल है। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी विकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर मर्दमन योजना

0: खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यूरो हमारे संवाददाता से।
1: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सोलाना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ
0: भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रोक अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूटर खानों और अवैध खनन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित न्यूज पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था। नीट परीक्षा में पूछे गए विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेन देन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताकि समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @FBIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: आपका स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्रवैयता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया। साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने के आवश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क रहेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद GDP के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंचों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसेवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर है। श्री मुसेवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसेवेनी ने 70% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन नए सप्ताह में सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 5.5 किलोमीटर फैला हुआ था। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में है। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट

थाने जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास से कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई, जिस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंचे हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन की को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार।

अग्र रूप में है। सूरज निकलते ही शोले उगलना शुरू कर देता है। गर्मी से लोग बेहाल हैं। लोग जिनको बड़ी मुश्किल से काट रहे हैं उन्हें शाम और रात का विश्व से बचाव का हर उपाय बेकार जान पड़ता है। लेकिन रुक रहा है। इस भीषण गर्मी में भी लोग सफर कर रहे हैं और मजदूर चट्टानें तोड़ रहे हैं। मौसम की दुश्वारियां हजारों वर्षों से मनुष्य और जीव जंतुओं के साथ चल रही है। कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती। इसी गर्मी से एक दिन समंदरों का पानी बादल बनकर बरसेगा, बीज उगेंगे, उत्सव मनेंगे और इसी सूरज की तपन से फल मिलेंगे।

आसानी से अनुमान नहीं लगा सकते। ये सबसे हुए लू के महीने से लोग इतने बेहाल रहते हैं, उसी महीने को एक शायर कितनी खूबसूरत मिसाल देता है, ये बेहद अंदर देने वाली बात है। क्या रूपक है सुनिए।

पक्षी और प्राणी जगत की परीक्षा लेती है। ये हमें विकट परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार करती है। सभी को इस सर्वाधिक कठिन मौसम में पेड़ों में नई कोमल

आकाशवाणी जमशेदपुर का ये विविध भारती केंद्र है 28.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम, थोड़ी ही देर में सुनेंगे।

Thank you.

done.

0: oggi che pare sia arrivato per la casa.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।

से हरी चाय सुनते कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज मिली थी। वरुण ग्रोवर का लिखा, अनु मलिक के संगीत से सजा,

जाने की स्थिति।

गुलजारे से आइए आपको सुनवाते हैं अगला गीत, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान और रेखा भारद्वाज ने। निलेश मिश्रा का लिखा गीत है, धुन इस बार फिर से प्रीतम की बनाई हुई और फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान।

प्रेजेंट के लोक में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आज आपके साथ पूजा नारायणिया। आइए सफर को जारी करते हुए आगे चलकर आपको सुनाती हूँ कि परम सुंदरी फिल्म से सेकंड थिएटर का गाया गीत है। आदित्य रिखारी ने साथ दिया है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और सचिन जीगर का ही संगीत है।

0: प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच धर्म सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के बारे में।
1: इस संदेश से पहले आपने गीत सुना परम सुंदरी फिल्म से सचिन जिगर की आवाजों में। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं सर्वोवरिक मनु रिटर्न फिल्म से स्वाति शर्मा ब्रिजेश चांदले की आवाजों में यह गीत, जिसे लिखा है वायु ने और धुन बनाई है तनिष्क साथी वायु ने।

0: मच गए, कम से कम 10 साल जयपुर में जीतने किया, पुरंतपन का दौर था हमारा।
1: दिलीप भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, टीम का जवाब भी मिले मुझे, इससे तरह से इन चीजों को हमारे दे और सरकार को देकर अवसर दिया। मैंने पढ़ा किसी उड़ान में अपनी स्वर्णिम में जाना थी और जब जीजी जीजी के साथ शुरू हो गए, किसी शहर के साथ नहीं हुआ।
1: राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे।

की बात अस्थिति का एक बार फिर से स्वागत है। जुबीन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में अगला गीत सुनिए फिल्म लव यापा से।

जुबिन नौटियाल और जहरा एक खान की आवाजों में गुरप्रीत सोनी का लिखा गीत था। इस गीत की बनाई थी अनिश बागची ने।

गीत था चित्तरंजन भट्ट का संगीत। गब्बर इज बैक फिल्म से देवनेजी और परमा

कविता से सियावा हमें ये गीत आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम सत्यलोक अब यही संपन्न होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो इसी कामना के साथ अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणा को।

साथ शायद ने कहा भी तो है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिन मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साल पर गाया नहीं जाता। आप सोच रहे होंगे कि मैं शेरो शायरी करने आया हूँ या आज के फनकार कार्यक्रम में कौन से कलाकार की बातें करने वाला हूँ, ये आपको बताने आया हूँ। तो पहले गाना सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और

मोती मोती की इस कहने से यह कर भी काफी असर पड़ा। मुकेश से इनको काफी आगे

सेशन एक ही परिवार के तीनों भाई गायक बने। सबसे पहले मुंबई आए मनहर उधास, उसके बाद आए पंकज उधास और फिर निर्मल उधास। लेकिन घर में गाने की परंपरा शुरू से थी नहीं। दरअसल मनहर उधास रेडियो पर गाने सुनते थे और साथ गुनगुनाते थे। उन्होंने संगीत की बाकायदा फिल्मी दुनिया में अपना पहला गाना गाने का मौका नहीं मिला था। अब आपको ये बताना भी जरूरी है कि मनहर आखिर मुंबई आ कैसे गए। दरअसल मनहर पीछे से पढ़ाई उन्होंने की, बचपन से ही गाने का शौक था। उनके एक रिश्तेदार एक फिल्म बना रहे थे, उसमें एक गाना गवाने के लिए उन्होंने मनहर को मुंबई बुलाया। मुंबई में मनहर ने एक नौकरी कर ली और बचे हुए समय में

किशोर के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और किशोर कुमार जैसे बड़े और दिग्गज गायकों के बीच एक युवा गायक को इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। उन्हीं दिनों में मन्ना रुदास अलग अलग जगह पर जाकर गाने गाते, शूट करते, संगीतकारों से मिला करते और अपने गाने सुनवा कर नए गानों की तलाश में रहते। इस बार मन्ना रुदास को लता मंगेशकर की ओर से एक संदेश आया कि वो उनके साथ एक शो में गाएं।

प्रयत्नों के मामले में उनकी ख्याति सारे संसार में फैली हुई है। इसके अलावा मनहर की एक और खासियत है और वो है गुजराती गजल। मनहर ने गुजराती परंपरा को शुरू करके उसे इतना लोकप्रिय बनाया है कि आज गुजराती गजल और मनहर एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। आइए अब

0: फेसबुक के अंतर्गत हम आपको अगर रास्ते की नंबरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके बारे में ये जानकारी के आधार पर भविष्य में स्कूल अस्पताल सड़कों और सरकारी योजनाओं के लाभ आपके फेस पर पहुँचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से SC.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल आखिरी में 15 मई 2026 अक्टूबर है तो खुली रहेगी। आपके गोपनीयता हमारे पास हिस्सा है। हमारे लोगों को सुनने में भविष्य और सशक्त योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बाकी बात धन्यवाद।
1: और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन लाइव।

और एकदम सच्चे चाहिए विविध भारती केंद्र है लखनऊ के संभव आर्थिक श्रोताओं फिल्म संगीत

yoga

77 e 2 partite nel

सुनते हैं यशुदास और आशा भोसले का गाया ये युगल गीत, बोल है युगेश के संगीत है।

Ich bin ein Mann, der sich

स्वतंत्र भारत की लोकसभा और राज्यसभा का स्थगन होने की इच्छा छह मई 1955 को पहली बार उच्च सदन और लोकसभा की

Pai, sobre

दर्शकों को खूब हंसाया। उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों में ब्रह्मचारी, चांद और सूरज, नौनिहाल, भूत बंगला, पूरब और शामिल हैं। दोस्तों, अभिनय के अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों का

प्रभावशाली भरतनाट्यम नर्तकियों में से एक माना जाता है, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को

सोशल portal अपने आप या परिवार की जानकारी स्वयं भरे। यह पोर्टल आपके लिए 15 मई 2026 है तो खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी जिम्मेदारी निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बाकी बात

0: से झाड़ देंगे तो जरूर मुझ पर पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए जो सुझाव देना चाहते हैं तो पत्र लिख करें मन की बात

सोनारी बस्ती विकास समिति द्वारा 16 मई को छऊ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्मिक जूनियर कॉलेज के पीछे स्थित मैदान में होने वाले इस महोत्सव में छऊ के माध्यम से झारखंड

को कर्णन ग्रुप के धूमित चौहान के निर्देशन में मारवाड़ी हास्य नाटक शेक्सपियर महारोजमाई का मंचन होगा। वहीं अंतिम दिन 19 मई को भारत की लोक संगीत सम्राज्ञी सीमा मिश्रा अपनी सुरीली आवाज का जादू दिखाएंगी।

और ग्रेजुएशन काफी हुआ ग्रेजुएशन का रिजल्ट 1 अप्रैल 2026 या उसके पहले जारी हो जाना चाहिए और आयु सीमा न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। रिजर्व कहते हैं कि उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में छूट जाएगी। श्रोताओ चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 15,000 से 20,000 तक का स्टाइपेंड मिलेगा। बैंक ने विभिन्न राज्यों और केंद्र

कॉलेज में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हो या फिर किसी ऑफिस का कर्मचारी, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है और ये सभी चीजें सभी में तनाव का एक बड़ा कारण बन सकती है। तो ऐसे में श्रोताओं, मेरा यही कहना है कि एक तरफ से दौड़ रही इस रोजमर्रा की जिंदगी में

जवान महसूस करते हैं। और तो और श्रोताओं, योग हमारे अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण को भी विकसित करने में मदद करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं और हमारे अंदर आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। साथ ही श्रोताओं, योग एकाग्रता और ध्यान में सुधार करने में भी मदद करता है, जिससे कि हम अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाते हैं, अपने काम में बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम भी अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कार्यक्रम में गीत संगीत की ओर बढ़ते हैं। आपको एक और प्यारा सा

उनका ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मनोहर दास की आवाज़ों में। आनंद बख्श के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। मनोहर दास के जन्मदिन के मौके पर आज उनकी आवाज़ से सभी गीत आपको सुना रहे हैं।

0: ढलता है एक शानदार शख्सियत।
1: मेरे रंगमंच में कम से कम 10 साल जैसे हमने फोटो किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा,
0: लेकिन शहर की परिवार के सदस्य राजीव
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। ठीक है जवाब दें, इसलिए मुझे इसके तरह से इन चीज़ों को संवारने और पैसा करने का अवसर दिया। मेरे पास जाने की उड़ान बाकी है, परिंदे में जाना थी और जिंदगी युद्ध के साथ शुरू हो गई। किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आपके मेहमान राजेश रेड्डी, 10 मई शाम 4 बजे

tu me digas que es verdad. Dijo, vaya,

सभी का जय से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और इस कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं काशकार मनोहर उदास को उनके जन्मदिन के मौके पर। सुन रहे हैं उन्हीं की आवाज में सभी कुछ गीतों को। कार्यक्रम में गीत अब आपको सुना रहे खलनायक मनोहर उदास के साथ अलका याग्निक और साथियों की आवाजें आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे राजदास।

साथ अलकायादी को साथियों की आवाजों में खलनायक संजय दीपक सुन रहे थे आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की तर्ज। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज सुन रहे हैं मन उदास की आवाज के शब्द की आइए सुन रहे श्रीदेव फिल्म के स्पीकर कन्हैयादास और अलकायादी को आनंद बख्शी के बोल है।

धरती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि रोजाना शाम 7:45 45 मिनट से इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनते हैं अलग अलग कुछ कार्यक्रम और आज आप सुन सकते हैं शास्त्रीय गीतों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग और हवा महल में सुनिए झलकी ना बाबा ना। रात 8 बजे से लेखन है संजय श्रीवास्तव का, निर्देशन गोविंद पारिक का। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पाठकाओं मनोहर दास के जन्मदिन पर उन पर केंद्रित गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जो उनकी आवाज में है। और अब आपको सुनवाते हैं जाबाज सिंह का ये गीत मनोहर दास और साधना सरगम की आवाज़ में। इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का

सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। और इस समय से ठीक पहले आपने कुर्बानी फिल्म का गीत सुना, कंचन मनोदार और नमन की आवाज में इंडिगो से बोल कल्याण के आनंद का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज आज का मनोदार के जन्मदिन पर उनकी आवाज के सभी गीतों को हम सुनवा रहे हैं। और अब सुनते हैं मनोदार कविता कृष्णमूर्ति और सुखिंदर सिंह की आवाजों में 14वां फिल्म का ये गीत आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में कर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा और कार्यक्रम में स्वागत के साथ साथ ही आज के कार्यक्रम की शुरुआत में आपने तो ढेरों बातें हम तक पहुँचा ही दी है, लेकिन हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं, और इस एक पैराग्राफ में बहुत सारे शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे संबंधित गीत, जिन पर आधारित गीत इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो आप सबके लिए इबारत तो पोस्ट कर दी जाती है और आपको ये पता लगाना होता है उसे पढ़कर कि कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। और कार्यक्रम का मजा भी इसी बात में है कि गानों की जो लिस्ट है आपकी जो लिस्ट है हमारी जो लिस्ट है हमने जो गाने सोचे हैं वो सोच आपकी सोच से लग जाए फेसबुक कमेंट के जरिए पोस्ट पर ये बता सकते हैं कि क्या कि कौन से गाने आपको लगता है कि शामिल होंगे, हो सकता है वो गाने शामिल हो जाए। तो चलिए आज का ये कार्यक्रम तो नेहा शर्मा के साथ आप सुनने वाले हैं और इस कार्यक्रम में आज की इबारत या टेक्स्ट हमने जो लिखी है वो क्या है आपको बता देते हैं। जिंदगी की पहेली कोई समझ कहाँ पाया है, कभी तो जिंदगी एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मुश्किल और कभी ऐसा ख्याल जो नहीं काबिल। जिंदगी एक ऐसी नदी जिसकी धारा बिना उलझनों के बहती है, कभी काफी झूमती और बहती है सौ अफसाने और कभी इसकी हकीकत कोई जाने तो कैसे जाने। ये जीवन जैसे सपनों की कहानी, थोड़ी अनजानी तो थोड़ी जानी पहचानी। इसलिए तो कहते हैं जीना तो उसी का जीना है जो दे बेसहारों का सहारा, जिसके होते न कोई जीता न कोई हारा। तो ये है आज की इबारत या टेक्स्ट जिसमें छुटे हैं वो शब्द जिनसे आज के कार्यक्रम में गाने मतलब शामिल हो सकते हैं। और आपने बहुत सारे गीत हमें लिख लिखे हैं, अलग अलग शब्दों को आपने छाट लिया और कहा है कि इन शब्दों पर गीत तो होने ही चाहिए। देखिए ये आपके कमेंट देख कर हमें यह अंदाजा हो गया है कि आपके लिस्ट और हमारी लिस्ट काफी हद तक तो मिल रही है। अब ये देखना है कि किन की जो गीत है वो आज के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जिन्हें ऐसा लगा कि ये गीत शामिल होने वाले हैं। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिंदगी की पहेली है, सवाल है, जवाब है, वो जो भी है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो आप किस तरह से सुलझाते हैं वो पहेली? क्या आप भी परेशान हो जाते हैं या आप रखते हैं संयम और अपने आप को संभालते हुए अपनी जिंदगी को एक सही धरे पर सही रास्ते पर ले आते हैं? और क्या है अफसाना आपकी जिंदगी का हमसे बाकी? तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत और हमें ये भी बताइए किसने आवाज

अपने आनंद चंद्र ये गीत आप सुन रहे थे। और हमारे बहुत से साथियों ने इस गीत के बारे में सोचा था कि ये गीत तो जरूर शामिल होगा, तो बिल्कुल सही बात तो है, क्योंकि एक टेक्स्ट का जो पहला अक्षर इस तरह से आए तो लगता है कि ये छोड़ है जो हमारे साथियों के मन में बनी हुई है। जी हमारे साथी कह रहे हैं कि मुझे तो कार्यक्रम को समझ में नहीं आ रहा, लगता है कि पोस्ट कब आती है पता नहीं चलता, तो लगता है कि कार्यक्रम के प्रसारण में कुछ परेशानी हो रही है या समझौता हो रहा है। हम इन्हें कहना चाहते हैं कि क्योंकि शुरुआती दौर में एक घंटे का जो अंतराल रहा करता था कार्यक्रम की पोस्ट और कार्यक्रम में, तो उस वक्त हमारे कई श्रोताओं ने कहा कि इतनी जल्दी टेक्स्ट में से शब्द खोजना या गीत सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बस बनाने के लिए ही कार्यक्रम का टेक्स्ट जो है वो रात में आ जाता है, ताकि आपको एक लंबा समय मिले ये सोचने के लिए कि कौन कौन से शब्द शामिल हो सकते हैं, और आप अपने पसंद के गीतों की लिस्ट भी हम तक पहुंचा सकते हैं पोस्ट पर कमेंट के जरिए। और जिस तरह से इन्होंने ये बात लिखी, हमारे दूसरे श्रोताओं ने तो ये भी कहा है कि भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें कि रात में ही पोस्ट आ जाती है। वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप रात को ही कार्यक्रम की पोस्ट डाल देते हो, और उन्होंने जो साथ में इमोजीज डाली है उसे समझ में आ रहा है कि उन्हें इस बात से खुशी है। वहीं हमारे एक और साथी ने भी कहा कि जो रात में पोस्ट आती है उससे उन्हें काफ़ी सुविधा हो जाती है, ताकि वो अपने जो भी बातें लिखनी है करनी है उसके लिए उन्हें एक पर्याप्त समय मिल जाता है। तो बस इस तरह से अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग बातें के साथ साथ अलग अलग विचार भी होते हैं। हमारे कौर साथी कह रहे कि इतनी जल्दी इबारत को हम श्रोतागण को शेयर करना कुछ कुछ सरल तरीका है, धन्यवाद विद्यार्थी परिवार। तो एक ही चीजों के दो अलग अलग पहलू देखने मिलते हैं।

किया गया 10% वो उसको पुनः जनवरी की तरह रखा जाए, उसको बढ़ोतरी न किया जाए। और चूंकि धनबाद नगर निगम क्षेत्र के लोगों के हित में है

सुन सुनकर आप को लगातार विजय सुनना पड़ेगा हर शब्द को पहचानने के लिए। खैर ये पहेली तो हम आपका भी छोड़ते हैं कि किस तरह से क्या होना चाहिए, लेकिन हमने ये सवाल आपसे पूछा था कि भाई कोई सपना ऐसा आपको आया है जो अब तक आपको याद हो, कितने दिन बीत गए हो और फिर भी वो सपना याद हो, उस सपने में कोई ऐसी कहानी हो जो आपने जिंदगी में कभी सोची ही ना हो सकता है कुछ सपने देखकर आप सोए हो और वो सपना आया हो। हमारे कॉल साथी कहते हैं कि भाई जिंदगी टाइम के नजदीक है जो मन को सोचते नहीं बल्कि बहुत कुछ सिखा जाते हैं और हर लाइन उसमें ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ सीख देती है। हमारे कॉल साथी हैं वो कह रहे हैं कि जिंदगी एक समंदर है जिसमें से जीती रहे तो आती जाती रहेंगी। और हमारे साथी हैं वो बहुत सी बातें कह रहे हैं। हमारे साथी का कहना है कि भाई शब्द नहीं गीत लिखकर पोस्ट कीजिए, तो मेरा ये सोचना है कि शायद उन्होंने श्रोताओं के कमेंट पर ही ये कमेंट किया है। हमारे कॉल साथी कहते हैं कि जिंदगी पहेली है, नदियों की धार जैसी बहती रहती है, मुश्किलों को पार करती हुई निरंतर बढ़ती जाती है। आगे उन्होंने ढेर सारे गीत सीखे हैं जो उनकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच होती है, यानी वो ये देखेंगे खुद से। हमारे कॉल साथी कह रहे हैं कि हर मुसीबत एक सबक लेकर आती है, मुसीबत में अनुभव से जीवन में सीखने को मिलता है, मुश्किल समय में धन का अभाव स्थिति को और कठिन बना देता है, इसलिए बचत और योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना जरूरी है। ये बात उन्होंने लिखी है जब हमने पूछा था कि भाई अगर मुश्किल वक्त आता है तो किस तरह से आप उससे बाहर निकलते हैं। हमारे कॉल साथी कहते हैं कि फिल्म के बारे में वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी कभी परेशान जब होती हूँ तो कुछ भी जिंदगी में थोड़े वक्त ठीक नहीं होते तो गाना सुनकर मन को शांति और कुछ रास्ता भी मिल जाता है। वही हमारे कॉल साथी का कहना है कि जिंदगी की मुश्किल पहेली सुलझानी हो तो संयम के साथ निरीक्षण करना चाहिए, फिर सोच समझ कर आचरण करना चाहिए। वैसे तो जन्म बुद्धिमत्ता और भाग्य ईश्वर की देन है, फिर भी कठिन स्थिति में मेहनत के साथ प्रयत्न करना हमारे हाथ में होता है। और एक और साथी कहते हैं जब मैं मुसीबत में होता हूँ तब शब्द कम पड़ जाते हैं तो मैं पुराने दौर के संगीत में अपनी संवेदना ढूंढता हूँ। कुंदन लाल सहगल की आवाज या शंकर जयकिशन की धुनों में एक ऐसा ठहराव है जो मेरे भावों पर मरहम जैसा काम करता है। तो भाई जब संगीत इतना अच्छा काम करता है तो क्यों ना सवाल जवाब बनकर आपसे पूछते नहीं है कुछ भी, पूछते हैं एक सवाल कि जिस फिल्म का ये गीत जो आपको सुनवा रही है।

सवाल तो ये था कि किस फिल्म का गीत थी सत्यपाल सन का ये गीत है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आपके भी कुछ सवाल हम तक पहुंच गए हैं। वैसे हमारे साथी ने कहा कि इस गाने के मामले में तो हमारी पसंद आपसे जा मिली और बहुत से साथियों की पसंद इस गाने के जरिए हम तक पहुंच गई और हमारी और उनकी लिस्ट भी मिल गई। हमारे साथी कहने कि मेरे सारे स्वप्न दीवार स्वप्न की तरह निकलते हैं, अतः चर्चा प्रतीत होती है। साथी ने बताया कि जीवन में एक बार उन्हें सपना आया था जब वो स्टेज पे गीत गा रहे हैं फिल्म पड़ोसन का कहना है कहना है और ये गीत उन्होंने पूरा का पूरा स्टेज पर गा दिया। ये सपना आज तक नहीं भूले, शायद ये मेरे संगीत के प्रति दीवानगी क्योंकि गाने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है। ये उन्होंने कहा। हमारे और साथी कहने की आपकी पोस्ट अभी बढ़िया लगी, जो बदलाव किया है अच्छा है। और हमारे और साथी हैं वो कह रहे हैं पोस्ट ही करना उचित है दूसरी जगह। हमारे और साथी कह रहे हैं जिंदगी को लेकर बहुत सी बातें हमारे साथी कहने लगे हैं और हमारे साथी कह रहे हैं कि जिंदगी एक पहेली, जिंदगी एक सवाल, जवाब मुश्किल, ख्याल महका, जिंदगी नदी धारा बहती जाती झूठी अफसानी होती है। इस तरह से उन्होंने इबारत में से काफी सारे शब्द सुन लिए हैं और हमें तो पूरा भरोसा है कि उनके शब्द तो कहीं ना कहीं जाकर हमारे लिस्ट मिल जाएंगे। हमारे बहुत से साथियों ने गीत भी लिखे हैं और उनके गीत जब हमारी लिस्ट के गीतों से मिलते हैं तो जो खुशी उन्हें होती है उतनी ही खुशी हमें भी होती है। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे अगर हम चलें और दूसरा गीत सुने तो हमारे साथी कौन से गीतों की फरमाइश कर सकते हैं और कौन से गीत उन्हें लगते हैं कि आ सकते हैं। वहीं हमारे साथी ने ये भी कहा कि मेरा सपना तो मैं बहुत देखती हूँ, अलग अलग तरह के होते हैं। कभी मैं किसी को बचा रही हूँ, डाकू से बचा रही हूँ। मैंने एक सपना देखा कि उस लड़के को जब वो शादी में गया था और वहाँ उसे देखा, सपने पूरे भी होते हैं कभी कभी, ऐसा उनका कहना है। भाई हमें तो ये अच्छा लग रहा है कि वो एक हीरो का किरदार निभा रहे हैं अपने सपनों में, क्योंकि डाकू का किरदार भी कई बार हम निभाते हैं अपने सपनों में। तो ऐसा कोई खतरनाक सपना आपको कभी आया है तो हमें बताइए अपने सपनों की कहानी। तब तक हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर में जहाँ आपको नदियाँ और धारा की

तब जाकर नींद में चले गए तो साथ ही बुढ़ापे में भी जवानी के सपने याद आते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिखी। हमारे कॉल साथी कह रहे हैं कि 25-30 साल पहले एक सपना उन्होंने देखा था जो आज भी याद आता है तो रूह कांप जाती है। अलग कमरे में मैं सो रही थी, माँ अलग कमरे में। मैंने सपने में देखा कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई बहुत दूर। नींद में ही रोने लगी और सपना टूट गया। दौड़कर जब माँ से मिलने गई तो माँ से लिपट कर बहुत रोई। हमारे कॉल साथी ने बताया मुझे 87 का सपना कि सपने में रात में उन्होंने देखा कि एक मानव आकृति आसमान में विचरण कर रही है। अगले सारे दिन उस सपने के बारे में सोचता रहा और रात को हमें एक दुखद समाचार मिला कि पिताजी नहीं रहे। हमारे कॉल साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। नदियाँ चले चले गए धारा कितना गहरा गहरी फिलोसफी स्थिति है। ये गीत भी मेरे प्रयास से सही निकला। एक नाव वाला गा रहा है, पंडित राजेश खन्ना और सरिता टैगोर नदी के किनारे बैठ कर घूम रखा रहे हैं। नदी की आवाज है। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी है अपने जीवन के बारे में, अपने सपनों के बारे में और भी बहुत सी बातें। हमें ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आप अपने शहर से दूर आ गए हो और आपको लग रहा हो कि कितना मुश्किल है जीवन यहाँ। कुछ ऐसा गीत भी आने वाला है, वो गीत भी आप सोच सकते हैं कि कौन सा गीत होगा जो दूसरे शहर की किसी शहर की मुश्किलों के बारे में बताता है। तब तक हम आपको अनुराधा तुलसी गीत सुनवा रहे हैं। हमें बताइए किसने इसे लिखा।

साथ सुन रहे थे शैलेंद्र के बोल रवि शंकर का संगीत। तो गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे साथी कह रहे हैं कि मुझे तो दांत टूटने का सपना बहुत बार आता है। अभी दो दिन पहले भी आया था, नींद सुनने पर सबसे पहले दांतों की तरफ ही ध्यान जाता है। और हमारे साथी कह रहे हैं कि मुझे सपने तो रोज आते हैं, लेकिन सुबह उठने के बाद कुछ याद नहीं रहता। ऐसा लगता है कि सुबह पड़े हुए सपने अक्सर सच होते हैं। हमारी और साथी कहती है कि पहले तो मुझे सपने बहुत आते थे और नींद खुलने के बाद फिर से आकर लेटती थी तो फिर वो सपने वापस में कंटिन्यू होते थे। इंस्टॉलमेंट के सपने उन दिनों बड़ा मजा आता था देखने में। भाई इस जगह आपकी और हमारी लिस्ट मिलती है। हम कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट से जब सपना देखते हैं कि जब बीच में नींद खुल जाए तो ऐसा लगता है इतना अच्छा सपना चला था, चलो वापस होकर इसे फिर से देखा जाए और पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं वहाँ हमारा दिमाग भी लग जाता है और किसी तरह से बड़ा आनंद तो आता है उस सपने को पूरा करने में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अपने शहर से दूर जीवन एक नई किताब जैसा होता है, जहाँ यादों की खुशबू साथ रहती है पर अपनों की कमी अक्सर रहती है। नई जगहें, नए लोग, नई जिम्मेदारियाँ इंसान को मजबूत बनाती हैं, लेकिन अपने शहर की गलियाँ, दोस्त और अपनापन दिल में हमेशा बसे रहते हैं। हमने ये पूछा था कि किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ मुश्किलें आपके सामने आई, क्या कि इस शहर में रहना कितना मुश्किल है। और ऐसा ही गीत हमने आपको पहचानने के लिए कहा था, क्योंकि मुश्किल शब्द हमारी आज की इबारत में है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना कि आज संत का गीत भी हम आपको सुनवाने वाले हैं। हमें बताइए कि इनकी आप

रहे थे मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजें। आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे साथी कहने की सपना तो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के दिनों में आया था, जिसे याद करके आज भी हंसी आती है। पहले दिन सपने में देखा कि परीक्षा भवन में बैठा हूँ पर पेपर बटे नहीं है, और दूसरे दिन सपना आया कि पेपर देकर बाहर निकल रहा हूँ। पेपर में सवाल क्या थे वो दिखाई ही नहीं दिए। कहीं हम तो ये कहेंगे कि ये सवाल और जो ये बीच का समय होता है उन्हें काटना तो मुश्किल होता है। अब सपने में भी अगर हम ये सब देखेंगे तो भाई वो तो हकीकत में भी नहीं दिख सकता। ऐसा लगता है बस किसी तरह से अंदर जाए और परीक्षा भवन में बैठे और बस बाहर आए। बीच का जो समय है किसी तरह से यूं ही कट जाए। और आपने बिल्कुल सही तरह से सपना देखा है। हमारे साथी कह रहे कि आपने पूछा है तो बता रहा हूँ। 1995 में हाईस्कूल पास करके पारिवारिक कारणों से बम्बई से दिल्ली आ गया। 4-5 साल तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता था यहाँ, बल्कि 2 बार भागकर वापस बम्बई गया। रिश्तेदारों का व्यवहार, वक्त और हालात ने ऐसा सबक सिखाया कि 30 सालों से दिल्ली में हूँ लेकिन बम्बई की तरफ पैर करके भी नहीं छूटा। उन्हें हमारे कौर साथी कह रहे कि गंगटोक भ्रमण के दौरान नाथुला जो चीन की सीमा पर है वहाँ ऑक्सीजन कम होने के कारण डर लगा था क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। तो इस तरह से जो मुश्किल वक्त के बारे में हमने पूछा वो हमारे साथियों ने बताया। हमारी कौर साथी कहती है कि जब मुसीबत में हो तब कैसे निकले, तो मैं थोड़ा चुप रहना चाहती हूँ, बहुत कम लोगों से बात करना चाहती हूँ और जो मेरे मन को अच्छा लगता है प्रभु का नाम बस उन्हें याद करती हूँ। बीच रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, कोई बात परेशान कर रही थी तो रात में बैठकर मन को उच्चारण करती हूँ, कोई गिनती नहीं करती हूँ। बहुत बार मन को सुकून के साथ साथ उस समस्या का समाधान भी निकल जाता है। वही हमारे बहुत से साथी हैं जो ये बता रहे हैं कि उनकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से काफी हद तक मिल गई है। बहुत सारे गीत जो उन्होंने सोचे थे और लिखे थे कमेंट में वो आज इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। तो यकीन मानिए हमें तो बहुत ही आनंद आ रहा है कि आपकी और हमारी लिस्ट मिल गई है। तो अब एक ऐसा गीत जिसके जो तो लिस्ट में बहुत देर से हम देख रहे हैं कि बहुत से साथियों की लिस्ट में शामिल है और ये हमारे गीत हमारी लिस्ट में भी काफी देर से

नाम अनादेव साथी जावा से आनंद बख्शी की बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत हमारे बहुत से साथियों ने

परीक्षा दे रहे हैं, उनकी परीक्षाएं हुई वो अब भी जारी है। हमारे बहुत से साथी बहुत खुश हैं और हम भी उनसे ज्यादा खुश हैं कि उनके गाने आज के लिस्ट में शामिल हो गए। तो गाना कभी जांच लेते हैं, क्या आपके लिस्ट में ये गाना था? फिल्म का नाम अगर बताए तो बहुत अच्छा होगा।

जीवन के जो देखे जाने वाला सपना वो कब से अपने स्कूली जीवन को पार कर चुके हैं और वो पढ़ चुके हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब हो चुकी है, कई तो रिटायर भी हो गए अपना काम करके, लेकिन ये जो सपने का

बिल्कुल सही जवाब दिया। जब बात हो रही है जिंदगी की मुश्किलों की और सपनों की, तो एक गीत हमें बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि वो गीत हमें किसी तरह से समझाता है कि जीवन को जीना ही है और जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। ये गीत आपको सुनवा रही है और आप हमें ये बताइए कि किस तरह का ये गीत है, आवाज किसकी है।

creature qui s'est

कितना अलग अलग हो सकता है कि हम आसानी से अनुमान भी लगा सकते हैं। ये सबसे हुए लू के बनने से लोग इतनी बेहाल रहते हैं

पक्षियों के भोजन के लिए तैयार करती है। सभी को इस सर्वाधिक कठिन मौसम में

पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के एल शौर्य को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त की गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौगा सीट से विजय आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई।

आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसटीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई है। एक रिपोर्ट।

पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई सात अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को

हां सर यानी वाहनों का उपयोग शुरू करेंगे लाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों के

0: questo è detto che ha detto.
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित

0: Madrid, Francisco Pérez, Mejía y Martín.
1: मुख्यमंत्री और मंडल प्रमुख भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों में मुख्यमंत्री और सहित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुमियोनो विश्व विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य

प्रोजेक्ट किया है जिसमें बताया गया है कि बंगलोर में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर की पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग

शिकायतें द्वारा इसका विवरण प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत से फिर लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस क्षेत्र में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सारे आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग केंद्र शासन के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ज्यादा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @FFARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपए प्रति

15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में आधा प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962, जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाष चंद्र साझा खाते में परमाणु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की सोंग स्यू चोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वजेता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली सिंह से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो सिंधु को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे के टू ली लॉन्ग से होगा। हालांकि भारत के आई से के जापान के कोदाई नाराउसा से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के कास्कन में आयोजित किए गए अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 77 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया के सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य 4 मुकाबलों के बाद 5 पदक से ही संतोष करना पड़ा। अब ये मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में 364 के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एम रंगासामी ने रिकॉर्ड 5,000 पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिमी संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय पेश किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आय शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मानसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुनहरी धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नकली।

मोर्चे की आवाज में लाजवंती संघ का गीत आप सुन रहे थे। मजरूही सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव वर्मन की तर्ज कार्यक्रम सदाबहार नाखे।

संगीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें। मधुबनी सुल्तानपुर की बोल सचिंदी परमंता सिंह की। कार्यक्रम सदाबहार लग में आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। आइए सुनते हैं आशा भोसले को मधुबनी सुल्तानपुरी के शब्दों के साथ। मदन मोहन की तर्ज फिल्म आखिरी दांव सुनते हैं।

के गांव पंचायत पीठ में आप सुना सबोल को मधुबनी सुल्तानपुरी के बोल मदन मोहन का संगीत। आपको याद दिला दें कि शाम 4 बजे सचिन चंदी के ठीक बाद आप सुन सकते हैं आज के मेहमान कार्यक्रम, जिसमें आज शायर और सेवानिवृत्ति निवृत्त केंद्र निदेशक राजेश से यूनिट खान की बातचीत आप सुन पाएंगे।

आवाज में आप सुन रहे थे आंवला ब्रिज फिल्म का ये गीत कमल जलालाबादी के बोल ओपी रेयर का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सदाबहार नखरे विविध भारती पर। और अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत। चंदन फिल्म का ये गीत मदन मोहन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की।

की आवाज में काला पानी बनकर भी प्राप्त हो रहे थे मधुरेश सुकांतरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत कार्यक्रम सदाबहार नखने विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत धूल का फूल फिल्म से महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें साहिल जानी के बोल एन दत्ता का संगीत ये गीत सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत।

for better beats, mental health, and vibrations.

इन लोगों का मोबाइल और नॉट पिन कार्ड बनाने के लिए

जयपुर में आयोजित होने वाली 17वीं फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए सचिता पब्लिक स्कूल और मांझी के 9 खिलाड़ियों का चयन झारखंड टीम में हुआ है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक इन खिलाड़ियों में अनुष्का तिवारी, सुजल सचिता और दीपा सहित शामिल हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

que tu vas te aller des bonnes à l'étage.

그런 게 다르구나.

और उसने अपने स्वाद का भी ध्यान रखना है, वही तो जीवन

0: एक है जो चार अलग अलग प्रकार की पहाड़ी पशु से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है। तेज मनी शब्द फारसी शब्द पश्मी मेल से लिया गया है, जिसका फारसी में अर्थ ऊन होता है। पश्मीना कपड़ा आमतौर पर कश्मीर में उत्पादित होता है।
1: और ये कपड़ा बेहद आरामदायक और मुलायम होता है। असली पश्मीना कपड़ा इतना नरम और मुलायम होता है कि आसानी से अंगूठी के आसपास जा सकता है। और कश्मीरी साड़ी आमतौर पर सर्दियों के मौसम में पहनी जाती है, क्योंकि ये कपड़ा गर्म और हल्का होता है, जिससे इसे पहनना और ले जाना

0: डिवीजन की साड़ियाँ, सेफ साड़ियाँ और जॉर्जेट साड़ियाँ, कितनी खूबसूरत साड़ी। जैसे तुमने कहा ना कि अंगूठी से हाथ पार होती है तो सबसे कितनी मुलायम होती है,
1: कितनी पतली होती है ना। और कश्मीरी साड़ियों की उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पूर्व की है और आज भी पश्मीना शॉल फैशनेबल जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के वार्डरोब में सबसे पसंदीदा वस्तुओं में से एक होती है। और कश्मीरी साड़ियाँ कश्मीर की धरती पर हाथ से बुनी जाने वाली एक प्रामाणिक शैली की साड़ियाँ हैं। और कश्मीरी साड़ी में हमेशा इसकी विशिष्ट कढ़ाई होती है। सटीक रूप से कहें तो हर कश्मीरी साड़ी मूल रूप से कढ़ाई वाली साड़ी होती है और कश्मीरी साड़ियाँ खूबसूरत और अनोखी कढ़ाई से सजी होती है, जो कश्मीर की पारंपरिक शैली जैसे कि आरी वर्क और तिल्ला कढ़ाई। कश्मीरी साड़ियों में अधिकतर फूलों के डिजाइन दिखाई देते हैं।
0: बिल्कुल, और कश्मीरी साड़ियाँ अधिकतर हल्के से लेकर गहरे रंगों तक कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। इनमें से कुछ सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले रंग सफेद, बेज, काला, पीला और नीला है। कश्मीरी या पश्मीनी साड़ियाँ आमतौर पर सादी साड़ियों के रूप में बुनी जाती है, लेकिन इन

0: करी है। प्लेन कश्मीरी साड़ियाँ कई रंगों और शेड्स में उपलब्ध हैं, जिनमें नेचुरल बेज से लेकर आइवरी, सफेद, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी जैसे अन्य रंग भी शामिल होते हैं। और काली बुनाई कश्मीर घाटी की एक अनूठी बुनाई शैली है, जिसका उपयोग कपड़े के विभिन्न रंगों में जटिल और बारीक पैटर्न बनने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है और काफी समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक साड़ी को बुनने में महीनों तक का समय लग सकता है। कानी पश्मीना साड़ियाँ उत्कृष्ट वस्त्र हैं और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में दी जा सकती है। ये भव्य साड़ियाँ किसी भी औपचारिक अवसर के लिए आदर्श विकल्प है, चाहे वो भव्य राष्ट्रीय भोज हो, सम्मेलन हो या मनोरंजन पूर्ण समारोह। ये साड़ियाँ हर जगह शोभा बढ़ाती है। जो कितना अच्छा लगता होगा जब महिलाएं साड़ियाँ ये वाली पश्मीना की साड़ियाँ पहन के निकलती होंगी, चार चार लग जाते होंगे महफिल में।
1: सचमुच एक जो कशीदा कढ़ाई है ना, ये अनूठी यहाँ की शैली है, जो केवल कश्मीर में ही प्रचलित है। साड़ी पर सुंदर और जटिल पैटर्न बनाने के लिए केवल कुछ ही टाकों का उपयोग किया जाता है। कशीदा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसे या तो केवल बॉर्डर या पल्लू पर किया जा सकता है या फिर पूरी साड़ी पर भी किया जा सकता है।

0: भर जाती है ये जगह, ये आदित्य से दोनों एक जैसी। उसकी खासियत ये है कि दोनों तरफ अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और नहीं भी। तो जनी पहले साल में बहुत सस्ती थी, लेकिन अब कश्मीरी साड़ी के डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। और प्रिंटेड कश्मीरी साड़ियाँ, पश्मीना सिल्क साड़ियाँ पारंपरिक प्रिंट में भी उपलब्ध है। इनमें कई प्रकार के प्रिंट मिलते हैं, जैसे साड़ी के पूरे भाग, बॉर्डर, पल्लू पर बूटी पर प्रिंट, फूलों वाले बॉर्डर और पल्लू जामिती के बॉर्डर और आदि। और ये प्रिंटेड साड़ियाँ रेशम में सूती साड़ियों की तरह ही बेहद आकर्षक और आरामदायक होती है, और इन्हें कैजुअल और ऑफिस दोनों तरह के मौकों पर पहना जा सकता है।
1: और कश्मीरी साड़ियाँ दोहरी या बहुरंगी बुनाई के पैटर्न में भी मिलती हैं। इनमें धारियों के सेट पैटर्न या सादे केंद्र पर मैचिंग बॉर्डर या पल्लू के डिजाइन होते हैं। ये बहुरंगी साड़ियाँ 100% पश्मीना और पश्मीना सिल्क दोनों में उपलब्ध है। और धागे को कंघी करने की प्रक्रिया से सख्त रेशों को नरम रेशों से अलग किया जाता है, फिर चरखे पर जिसे स्थानीय भाषा में चरखा कहा जाता है, इसे सावधानी से रोक हाथ से काटा जाता है। ऊन व्यापारी ताने और बाने के लिए धागे को अलग करते हैं। रंगीन साड़ियों के लिए इस चरण में रंगर या रंग काट की सहायता से ली जाती है। रंगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊन के गुच्छों को बॉबिन में बांधा जाता है, फिर उन्हें ताना लगाने के लिए तैयार किया जाता है। इससे काफी मेहनत लगती है साड़ी को बनाने के लिए, एक दो महीने का समय लग जाता है, बहुत अच्छी डिजाइन उभर कर आती है। सुनाई हमारी साथी को कमेंट भी लिखकर ले जाती है, मैं इसको पढ़ लेती हूँ। साड़ियों का संसार पश्मीना, ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, वहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध साड़ी है। अभी कुछ महीने पहले मेरे घर में शादी थी, तब मैंने ये साड़ी बारात कार्यक्रम में पहनी थी, और इसका सिल्क बहुत ही मुलायम होता है, हाथ से पिघलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके सूत और

0: कम 10 साल जयपुर में व्यतीत किया। लड़कपन का दौर था हमारा।
1: एक बहुत ही परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। एक्टिंग का जॉब भी जिसने मुझे इतने तरह से इन चीज़ों को हमार दे और सरकार करने का अवसर दिया। और जब जी जी के साथ शुरू हो गया, किसी शहर के साथ नहीं हुआ।

जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही जरूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। पर ऐसी बात नहीं है, हम पौष्टिक भोजन भी खा के यानी खाने के लिए जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खा के ही जीना है, बहुत सारे पौष्टिक

कि जो भी खाओ जीने के लिए खाओ, एक बात कानून से खाने से भी ये क्या काम की, मतलब कहते हैं स्विट्जरलैंड घाटी के मतलब जीतो का रास्ता स्वादन सेहत के लिए भी बड़ा सकते हैं। आपने बहुत अच्छी भी बात इसमें शामिल कर दिए। एक हमारे सचिन ने लिखा है, कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी और सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही उसे पोषण है भी नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वास्थ्य के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें जीने के लिए खाना चाहिए, न कि केवल खाने के लिए जीना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ।

पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चकोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। सर या न

0: सत्यता के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना सबसे स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिट्टी स्वास्थ्य इसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं, अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है।
1: क्या बात है,
0: बहुत सुंदर बात।
1: हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, और जब समझ में आता है कि जीने के लिए कम तौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन कड़ी जीविता अन्य पूर्ण ब्रह्म उदर

बहुत लगी, पहले खा लूँ फिर जाके कर लूँ।

0: पौष्टिक भेड़ की भी रेसिपी बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा जंक फूड खाते ही, इसमें भी हम बहुत इसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं मंदिर, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए, सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए, डब्बा बंद और गैर मौसमी फल सब्जी और अनाज से बचना चाहिए, अपने रहने के एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए। यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ उगने वाली जो सब्जियाँ होती है वो फल होते हैं उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं, वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं जैसे अब हम बचपन में कितने है ना जाम अमरूद खाते थे, बेर खाते थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज्यादा विटामिन मिनरल मौजूद है।
1: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे मतलब
0: खाया जाता
1: है, सूखा जाता है, क्या लिया जाता है, तो नहीं बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को सूखना पड़ता है। उन्हें सोने के साथ का स्वाद नहीं पता है, उन्हें घरवेरी का स्वाद नहीं पता है,
0: तो उन्हें कैसे मालूम होगा, हमने ही नहीं बताया।
1: हाँ हम नहीं बता रहे हैं, हम उन जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी गलती अपने लोगों से कही जा सकती है। जो फिर संदेश पढ़ लेते हैं, साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए। कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ भी ज्यादा खा लिया जाता है तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक मिनट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सुना ली, उन्होंने इंग्लिश में लिखा है कि ज्यादातर तो सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें नहीं होती है। और हम अपने साथी से कहेंगे हिंदी में संदेश के लिए तो ज्यादा अच्छा रहता है,
0: पढ़ने में दिक्कत नहीं
1: होती है, वो इंग्लिश की आंखों में अट्रैक्ट कर लेता है, हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है।
0: एक हमारे साथी लिखते मंजिल, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना नई संस्कृतियों व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। ये सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लुलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है जैसे अपच या वजन।

0: को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए।
1: क्या बात है, और हमारे साथी जो है उन्होंने छोटा सा संदेश दिया है, खाने के लिए क्या शर्माना, कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट को लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था, क्या बात है, उनको समझा।
0: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियर कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण ही दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियर के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों को जन्म देता है।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं जीने के लिए खाना खाते हैं वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियाँ, फल और सूप। और बच्चों की बात आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छे तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन नहीं है जो शरीर को ताकत और मन को संतुलन, जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक है, वैसे ही जैसे वैसे तुमने ये पढ़ा है,
0: ये पढ़ दिया है,
1: अच्छी बात है, उनको बड़ा अच्छा लगा होगा। तो एक दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं, सुनाइए। खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते हैं, भाई बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वास्थ्य के लिए भोजन करते हैं वही खाने के लिए जीते, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीना पर

शब्द हमारा विदा

0: प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला बिल्कुल छू जाती है।
1: बिल्कुल, हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर विश्वास, मतलब भरोसा, अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो जिन्हें हम अपनी अक्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो वो आत्मविश्वास कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौती का सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात।
0: एक हमारे चाचा ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, ना कि केवल अहंकार। ये अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब।
1: साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है। वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मविश्वास से करें, यानी कि आप कोई भी काम करें तो यह मत सोचिए कि हमें इस काम की सफलता मिलेगी। पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं तो वही भरोसा हमारे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास के अंतर लगता है। आत्मविश्वास ही वो शक्ति जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट आप पढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट किए हैं। तो उससे पहले गाना

0: स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है, इसका मतलब पता न होने पर भी सीख लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है, यह हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। इतनी सारी बातें करने के बाद तो आप सोते हैं रंजन की ओर, जिसमें मुझे मिल गई है चटकी दाबेली की रेसिपी।
0: तो
1: हमारी चाची ने भेजी, तो इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला ज्यादा बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और सूखी नारियल को भून कर पीस कर तैयार कर लीजिए। तो अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी उन्होंने की जो आलू का मसाला 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है जो पहले से तैयार

बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। वैसे भेलपुरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता स्टार्ट का प्रकार है, इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है, लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई की चौपाटी गिरगांव जो बीच की भेलपुरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री उन्होंने बताया है कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी है। चुरमुरी के

डबल रोटी, देवनागरी दादरी घर टेक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुए मसालेदार मीठा नाश्ता है, और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें

para

Hey, I'm Rachel.

Gott, mein Herr, für manche daran folgen.

0: का विवेक भारती केंद्र है एसएमसी 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। अगले प्रसारण के लिए जो विवेक भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से
1: और वो ऊर्जा उत्साह वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया, ये खुश हुआ। क्या बात है। अच्छा, आकाश स्वामी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है, एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चिंतना का योगदान रहा है आकाश स्वामी का। 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
2: इस यात्रा का तो कोई भारत में खासतौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का सबसे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी के पर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंची तो आकाशवाणी की ही थी। और इससे दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना इतनी नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से काम हुआ और हो रहा है।
1: बिल्कुल, अपने बचपन की तरफ अगर लौटे तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
2: और जो भी कमाल की बात यह है कि अब हमारा बचपन जो है वो उस जमाने में और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने का कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो से सुनकर ही बढ़ा, में जो कि भी संस्कार आए सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाज़ें कानों में इतनी अच्छी लगती थी, उन्होंने फिल्म म्यूजिक की मैं बाद में बात करूँगा, जिनको हम सुनते थे चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में सुपरस्टार हुआ करते थे, इनकी आवाज़ सुना आवाजा अनुसार न्यूज लीडर ये सब जो है। तो अगर किसी ने कहा जाए कि आप रेडियो पर काम करते, अच्छा अनाउंसर है आप, ये अनाउंसर का वो दर्जा था मतलब वो पॉपुलरिटी थी, तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, तो जानते ही नहीं आप, लेकिन अगर अनाउंसर है आप अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर, थ्री डी सिंगर होना, रेडियो का आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बात है। तो हम जब बचपन में सुना करते थे तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी मेरे शुरू हुआ था।
1: जी जी,
2: तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक गायक के रूप में, एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम उसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एक जब प्रोग्राम रखी थी उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये कि आज मैं विविध भारती में बैठती ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक और उज्जवल भारती का फिल्म म्यूजिक तो कहना ही क्या
1: जी,
2: तो जिनको जिस चैनल को सुन सुन के वो संगीत संचार वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिनको सुन के हम लोग बड़े हुए विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊँगा
1: जी
2: और न सिर्फ आऊँगा
1: बल्कि हेड करेंगे
2: उसका कार्यक्रम का, मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊँगा, देख पाऊँगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते जब बड़ा हुआ
1: वाह वाह
2: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ। मेरी एक अच्छी टीम थी, एक चैनल में क्या नाम लू

0: थे, हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके, और आज वो चैनल बहुत पॉपुलर है।
1: मुझे याद आता है, क्या बात है, मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। किसी प्यारी आपने बात कही है, युवाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युवाणी के बैच में आप रहते हैं, न जाने कितने लोगों की यादें ताज़ा हो गई होंगी। मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताज़ा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युवाणी से ही की है, तो मुझे जहन में युवाणी की सिग्नल से ट्यून बजने लगी जिस तरीके वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था, या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुँचा?
0: हाँ, दरअसल ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, आपको एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो करके और भी ज़्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर का आकाशवाणी ग्रामीण के मामले में नंबर वन था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े
0: बड़े लोग, नंदलाल शर्मा जी, श्रोम सुपुरी, ये सब लोग वहाँ पे
1: ग्रामीण।
0: हाँ हाँ, तो ये सब जिसको मेयर था वो ऐसा था कि पूछो मत। जब हम आकाशवाणी बैठे उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे और कर रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन चले गए, ऊपर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पर उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफ़र जो है आकाशवाणी का सफ़र, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफ़र शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा।
1: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए।
0: रंगमंच का यूँ था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊँ कि मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है। हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट थे, वो सुगम संगीत के गीत, गजल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और स्मृति मंडल, ये दो सांस्कृतिक मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भागवत आपकार ने खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सब को हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आस पास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए। तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमको बचपन से मिला।
1: हम एक पल के लिए रुकना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताए तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आगरा से होना चाहिए, तो जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है इसके बारे में।
0: बिल्कुल सही है, वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आगरा के ही हैं
1: जी,
0: तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माता जी सब वहीं से रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर और मेरे पिताजी जो पोस्टल ग्राफ में डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार, हम लोग नहीं रहे कभी भी, माता जी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कम शादी ब्याह में गए, साल देखा कर घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माता जी वहाँ से निकल चुके थे नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन था वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए। हम बहुत बचपन में ही, हम बच्चे लोग जो थे जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आगरा और जयपुर का।
1: बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस बात के बारे में बात करनी ही चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बदले कल उपन्यास का विषय रहा है, आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है, तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था,
0: ओम शिवपुरी उस वक्त एनर्जी जा चुके थे।
1: ओके,
0: हाँ, पर हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिंग हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, और एक सीखने का प्रोसेस जारी था
1: जी।
0: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का तुगलक,
1: क्या
0: इब्राहिम बलखा जी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं ये कह सकता हूँ कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको क्रेडिट नहीं मिला, उनको काम नहीं मिला, इसके हकदार थे वो दिलीप कुमार थे।
1: बिल्कुल,
0: रंगो मंच के दिलीप कुमार, तो वो प्लेस था उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायरेक्ट डिलीवरी, ये सब कुछ, तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायुग, ये सब देखे हमने, और उमा इंद्रजीत, ये सब नाटक बादल सरकार से आए। तो रंगमंच एक अच्छी बात।

0: लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे, क्लासिकल म्यूजिक भी होते थे।
1: बिल्कुल, आज देहरादून जैसी चीजें चल रही है तो कैसा लगता है आपको?
0: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गया हूँ उनके फेस्टिवल में और जहाँ से बकरंद देश पांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहाँ पे चीज लेते हैं प्ले लेके, तो वो एक ऐसा थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहाँ पे और अच्छा चल रहा है।
1: जी, और बातें करेंगे आपसे बचपन की, हम यही उसी वक्त में थोड़ा सा रहना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस जिस दौर की हम बात करें उस दौर की बात के नाम एक गाना होना

0: में चिड़िया देखने की और शौकीनों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक एक थिएटर है
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुना हो?
0: बिल्कुल
1: हाँ, वो तो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर और उसमें राज वाला वो भी था
0: जी,
1: चैलेंजर शाही अंदाज था, तो वो लोग देखे जाते थे फिल्म तो बाद में थिएटर पहले देखते थे।
0: हाँ, वो टूरिस्ट
1: था, वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी,
1: तो राज मंदिर जैम पोलिट्री ये सब जो उस वक्त फिल्में भी मतलब आज कई नहीं इससे करोड़ उतने करोड़ मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती है
0: बिल्कुल
1: है ना, उससे 100 दिन पूरे किए। तो उस वक्त वो ज़माना था जब जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे और फिल्मों का तो खैर गौर ही अलग था। हम कभी कभी स्कूल से भी देखा करते थे, ये सब भी होता था
0: जी,
1: और तो वो
0: स्कूल के बाद देखा भी हुआ
1: उसका, जैसे फिल्म अमेरिकी की थी
0: वाह,
1: और कई फिल्में थी और लंबी लंबी लाइनें और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात है, तो ये वो दौर देखा है जो थिएटर में जाकर फिल्म देखना और स्कूल से भाग के भी देखना और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब दौर देखा है। और फिल्म देखने का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, जब रेडियो चल रहा है एक बार से चल रहा है फिल्म भी गा रहे हैं, तो लता जी है कि आशा जी है कि रवि है कि मुकेश है कि मन्ना डे है, तो ये सब चलता। और हमारे चूंकि संस्कार में म्यूजिक भी था और डीजी भी था, मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
0: अच्छा, क्योंकि गाना चलता
1: है, गाना चलता नहीं था
0: जी,
1: मैं घर पर तो वो घर वाले तो मुझे जल्दी गानों का शौक
0: जी,
1: गुनगुनाने का शौक वो बचपन से था, फिर वो संस्कार में ऐसा एक गजरे बनाने लगा और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वही कर फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत बड़ा।
0: क्या बात है, और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका है?
1: हाँ, मेरे कारण गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी बड़े भाई साहब आज भी गायक हैं, वो सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उसका
0: जी, रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन सी नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया
0: जी,
1: एक लड़कपन का दौर था हमारा, बी ए का दौर ही था, हम उम्र लोगों ने हमने टीम बनाई और मैंने इसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प
0: जी,
1: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे दोस्त और चला रहा है हरी ड्राइवर का नाम है। तो हम 4 लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था,
0: बाद
1: परिवार कभी कभी छोटा मोटा रोल रोज पड़ी से कर लिया, तो उससे हमने एकांत की शुरुआत की। और उस वक्त मैं ज़्यादातर राजनीतिक जंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज़्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओ कि मोतियाल सभागार आ रहा है
0: बाबा,
1: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह
0: क्या बात,
1: और एक नाटक जिसको बहुत ज़्यादा जिसके हमने सोच किए भूमिका, उसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का ड्रामा कॉम्पिटिशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला, और एक नाटक मराठी क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो बहुभाषी कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो, उसमें गुजराती मराठी सिंधी पंजाबी सिख मुस्लिम सब मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था, मतलब आज इनको घर में घुस जाए कल उस घर में घुस जाए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं, होली हो ईद हो और गणेश उत्सव हो, तो गणेश उत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेश उत्सव क्या है, जब वो जयपुर में देख चुके हैं
0: वाह वाह,
1: तो उनकी एक्टिविटी में शामिल होना सब कुछ करना, तो मराठी लोगों का रुका बैठा बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया
0: जैसे,
1: तो एक नाटक है शाम फड़के का कॉमेडी काका की चाचा जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी, उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल
0: क्या बात
1: इस नाम से किया, और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा, रविंद्र वज पर टिकटेड हाउसफुल वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया हमने किया और खूब प्रसन्न किया और उसको बहुत खुश हुए।
0: अब जब अतरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे, कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौर?
1: नहीं, मेरा ये रहा कि वो अतरानी साहब से बहुत अच्छे बार एक किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ,
0: अच्छा
1: जो उस दौरान में नहीं तो वो जयपुर से जाने का
0: जब आप
1: वो तो हमसे काफी थे, तो लेकिन उनकी एमआर रोड से 5 बच्ची के पास हुई, सब बताते थे कि ये अतरानी साहब के भाई की दुकान है
0: जी,
1: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी
0: बिल्कुल,
1: फिर हमारे जो चीज चिंतू कपूर आपने नाम सुना होगा
0: जी जी बिल्कुल,
1: ओम शिवपुरी ये सब ये हमारे सीनियर लोग मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही, लेकिन उनको सुन सुन के भतीजा हमारे लिए वो निस्तार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे।
0: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युवाणी करने लगे उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे, इन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
1: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर मैंने कहा जब नाटक में तो नंबर वन हुआ करता था, हवा में मैक्सिमम उसके हुआ करते थे। उसके अलावा वहाँ पे जो आधा आधा घंटे के या एक एक घंटे के नाटक हुआ थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा
0: बिल्कुल,
1: गणपत लाल गांधी जिनका हवा महल में
0: हवा महल में उनकी नाटक
1: है ना, रंजना चौधरी, तो ये एक से नाम थे और एक से आर्टिस्ट थे और जिनके प्ले लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे।
0: जी, और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी,
1: हाँ क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था
0: जी,
1: वो सिर्फ रेल सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था।

0: इंटरटेनमेंट है, वहाँ पे कोई कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजियर को लिंक किया हुआ है
1: जी। तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
0: मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरे से, मैं एमए मैंने किया ही किया था
1: जी।
0: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका
1: बहुत ही मशहूर,
0: हिंदुस्तान का सब राजस्थान का नंबर वन अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था
1: जी।
0: वो राजस्थान में पहली बार हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा है, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था, उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्भूषण पुलिस साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था, उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित के संपादक थे, मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहाँ काम किया और वो हर इस बार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी UPSC की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ, जिसे इंटरव्यू दिया सब हो गया। और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
1: अच्छा,
0: ये 1980 की बात है।
1: क्या बात है,
0: 19 नवम्बर, हाँ 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई, मैंने वहाँ ज्वाइन किया, 1 साल वहाँ काम किया। और वहाँ पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे,
1: बिल्कुल
0: पंजाबी राइटर सोहन सिंह मिश्रा
1: जी,
0: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी में अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पाकर, ये सब लोग वहाँ पे बड़े एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पाकर लुधियाना से सब कुछ। तो जलंधर भी उसका पंजाब का जयपुर था, करते
1: बिल्कुल
0: पंजाब का जयपुर था वो, वहाँ बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत अच्छे शायर था
1: जी।
0: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा और मेरे जो सीनियर थे वो सारे जो पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहाँ पे, हिंदी का प्रोग्राम नहीं संभालता था वहाँ पे, हिंदी का टेक्स्ट था वहाँ पे मैं, लेकिन एक प्रोग्राम पंजाबी ऐसी भाषा थी जो समझ लो उसकी उसके लिए
1: बोल रहा हूँ
0: जी। तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा।
1: कितने वक्त तक आप जलंधर?
0: 1 साल।
1: और से आपका वक्त करीबी ताल्लुक रहा ये कैसे?
0: मैंने बताया ना सोहन सिंह मिश्रा
1: जी,
0: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहाँ पे
1: जी,
0: जो सुरजीत पाकर वो जो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, उसके बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले थे,
1: बिल्कुल
0: मिश्रा साहब को मिला।
1: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
0: हाँ, लिखना तो मैंने जयपुर में शुरू हो चुका था, लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, सुबह मेरी मंच से हुई गीत लिखता भी था, छपते भी थे सब कुछ। और एक गीतकार के तौर पर राजस्थान में दूसरी जगह कवि सम्मेलन में जाया करता था, उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था या पहचान या आत्मविश्वास जिसको मिला, तो नीरज जी का तो बोलवाला था उस वक्त गीतों के राजकुमार,
1: बिल्कुल
0: पूरे के नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे
1: सुबह तक, लोग सुनते थे और सबको पढ़वाया
0: जी। और मेरा वो सुबह भी दौर था
1: जी,
0: तो नीरज जी थे वहाँ पे, वो मुख्य कवि जो थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना तो नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया प्रचंड और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आगे डाल दी।
1: अरे
0: तो ये एक आशीर्वाद था जो मुझे आप
1: पढ़ा, क्या वो गीत याद है आपको
0: जो पढ़ाई दो
1: जी
0: करेंडू में
1: स्वागत।
0: जिंदगी की बात

शुरू हुआ था कि ये बहुत कुछ

0: che nei redditi presentato negli esiti storici e abbiamo voluto aggiungere una maniera a
1: un'altra. Sì, bello. Ma è giusto, guardi, guarda, il sebre si fa, ma ci va nella, o forza nella, come è giusto aggiungere un'altra
0: cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è
1: una cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è una सरकार वो गायक थे और संस्था चला रहे थे कुछ लेकिन अलग तरह के पिता थे उनके बहुत कम बोलना मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना
0: मिली
1: हमारे नाटक भी देखते थे आते थे देखते थे लोग खुश हो रहे तालियां बजा रहे या किसी के कंसलों में भी आते थे कभी वो आते देखा और चले आए घर से अखबार में भी कॉलम लिखता था हर रोज संडे आता था पढ़ते थे शौकी साहब लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी वो दौर था तो हो सकता है कि आज तक हम अपने बच्चों से दोस्ती से बात करते हैं
0: जी
1: पिताजी का एक डिस्टेंस हमेशा रहते हैं
0: तो आपका भी रहिए हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा लगा है कि नहीं
1: तो वो उसको सुनता जरूर हो पर हमारे संबंध माँ से होता था उनसे खूब मतलब हंसी मजाक वो बोला तो अल्लाह का नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ पिताजी से घर पे जो था लेकिन वो खुश तो होते थे बहुत खुश होते थे लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोल देते थे
0: वो दौर भी ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ करता था माँ की स्मृति हमारे साथ बाकी है कि उनकी क्या कुछ आपने सीखा है आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है और आपकी कामयाबी उन्हें कितना खुशी दी
1: बिल्कुल जब पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया
0: जी
1: पिता ने माहौल जब मतलब अगर मैं कलाकार बना हूँ या कलाकार कला के क्षेत्र में हूँ तो वो पिता की संस्कार है पिता ने जो माहौल जो बचपन से अगर आप देखें तो कुमार गंधर भीमसेन जोशी रविशंकर बुद्धदेव मुखर्जी राजन साजन मिश्र अमजद अली हाँ बारह कोई नाम लीजिए कोई नाम लीजिए क्योंकि हमने बचपन में आगे बढ़ने का नाम देखा आमने सामने देखा उनके आसपास घूमे बैठे गिरजा देवी बेगम अख्तर कोई नाम लीजिए तो वो सब हमने देखा है और उनके साथ उठे बैठे कई लोग हमारे घर आए तो ये माहौल पिताजी ने दिया उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम इस दुनिया को देख सकते उन बड़े लोगों को देख सकते हैं राज्यों तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए संगीत जो है उस तरह से भी संस्कार में आता है एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते और एक सुन के भी सीखते हैं तो वो हमने उस तरह से सीखा तो पिताजी ने माहौल दिया संस्कार दिया माँ ने जो है वो पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए मैं तुम बात करूँ तो हमारी कॉलोनी में जो मैंने कहा ना वो एक मिनी भारत था वो
0: जी जी
1: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से
0: नया
1: मतलब खेलना कूदना ही तो सही है ही सभी बच्चे करते हैं क्योंकि लेकिन खेलने की आदत जो है ना किसी के साथ भी मजाक कर लेना किसी को आवाज में तंग करना या मस्ती करना
0: जी
1: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई तो वो छोटू की शिकायत
0: रोज आई
1: हर मतलब हर दूसरे दिन हर दिन गए आज इतने की आज इतने को किया ये सब करता रहता था तो वो माँ थी समाज की थी और कभी कभी वो पिताजी पहुंच जाती पिताजी जिस घर से पेश आते थे वो तो अच्छा बचपन जीता और माँ ने जो है वो फिर पिताजी का यही था कि वो दिन में नौकरी करना आना रही छोड़ा चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र में घर में वो पारिवारिक स्थिति पिता नहीं थे
0: वो अपनी दुनिया
1: वो अपनी दुनिया से उनके पर आए तो भाई ऑफिस चले गए शाम को आए और ब्रश हुए चाय बाय की और फिर सीधा रह गए तो वहाँ से लौटे खाना खाए सो गए मतलब बच्चों से भी उनका उत्तर संवाद नहीं होता था वो माँ थी जिसको मैंने कहा कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो पारिवारिक मजबूती जो है खुलापन भी फूट भी

0: तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा तो वो रूरल मिडिल क्लास, मतलब सरकारी कर्मचारी जो है बिल्कुल तो, लेकिन बहुत खुशहाल, मतलब मैं अपने आप को अगर आप देखें तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे। और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं, 10 सालों की क्या बात है,
1: इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यह आशीर्वाद कई प्रकारों की थी।
0: हाँ
1: इच्छा बचपन
0: इच्छा बचपन
1: जो जल्द की जो दिल है उनके उनके नाम।

0: वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखक की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहाँ पर जयपुर में? जी, जयपुर में जैसा मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे कार्य गुरु भी मैं जिनका मान सकता था और जो मेरा मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक तो तारा प्रकाश जोशी
1: जी
0: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य को फिल्मों में भी लिखा
1: जी
0: रंग लाई
1: जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों।
0: और तारा प्रकाश जोशी जी IAS ऑफिसर थे लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था। उस समय इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मुझे एक पंक्ति गुरु को बताऊंगा उनकी, मेरे गुरु को मैं देख सकते, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
1: ओ हो हो हो, क्या अद्भुत है,
0: क्या अद्भुत है, जैसे गर्म तवे पर पानी,
1: क्या बात है।
0: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी,
1: क्या
0: बात सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे जिनके
1: जीवन में कभी भूलेगा नहीं, इतनी अद्भुत।
0: मेरा वेतन है ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी। और हरिराम आचार्य जी के तो ये लोग थे जैसे सीखा। लेकिन मेरे साथ इसकी बात रही, आज सत्कारों में तुम आगे लेखन की तरह रखा तो मंच नहीं बताया वो ये कि वो बाकी विधायक भी पढ़ता था मेरे, निर्मल वर्मा, विष्णु सानी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब शिक्षक भी, उपाध्याय भी, आलोचना भी, नवर सिंह जी ने हिंदी में पहले किया था तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में हमारे अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबों किताबों को वो नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी, सारे अखबार आते थे, मतलब अखबार तो सही थे सर।

0: बाकायदा गजल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट से की मौलवी साहब आते थे, मुझे पढ़ाते थे, सिखाते थे, और फिर मैं बाकायदा गीत से गजल में शामिल हो गया। गजल को मैंने अपनाया और चार से गजल ने मुझे अपनाया।
1: क्या प्यारी बात है। तो शुरुआती गजलों में से कोई एक कौन सी रही है?
0: मेरा भगवत यूरोप की ये जो गजल पंकज दास साहब ने गाई और पूरे दुनिया में पहुंची,
1: जो आपकी पहचान के साथ
0: हुई है, वो जयपुर की गजल है।
1: वाह,
0: वो शुरुआत
1: कमाल।
0: हाँ,
1: ये मुझे नहीं पता था।
0: और ये मेरे लिए हैरत की बात थी कि वो आपकी शुरुआती गजल है। नहीं, जिन्होंने आश्चर्य की बात भी होनी चाहिए वो कि गीत से मेरी यात्रा शुरू हो चुकी थी।
1: जी,
0: गजल की विधाओं को मैंने
1: अपनी शिफ्ट किया है।
0: हाँ, गजल ने शिफ्ट किया और उसको अपना लिया। मेरे बड़े कहा ना, हम उम्र लोगों के साथ उठते बैठते सुनते सुनाते उनसे अच्छे मिली। और एक हमारे बुजुर्ग होते थे, कहना कि टोप पर रहते थे वो, तो वो भी आया करते थे और शाम को बैठते हैं और एक दूसरे को सुना सुना। तो उन्होंने जब ये पहली बार सुनी गजल तो वो भी शौक गए, मतलब क्योंकि नजदीकल ढंग की गजल नहीं है।
1: बिल्कुल है ना,
0: बिल्कुल। बोले और ये जो जिसको कि गजल जबान में या उर्दू में टेक्निकली रजीज कहते हैं, है ना, जो गजल के भक्ति के आखिर में आती है और वो रिपीट होती है हर रुपये में, उससे डरता है। अब ये रजीज जो है वो अनसुनी चीज थी, मतलब
1: और कभी इससे पहले मैंने सुना नहीं है,
0: तो खुद मुश्किल भी है।
1: हाँ, मुश्किल
0: है, मुश्किल है, तो उसको निभा ले जाना। और उससे तो वो भी हैरान हुए कि ये क्या तुम ये रजीज ले आए, और उसको तुमने शेर भी कह दिए और अच्छे शेर कह दिए सब कुछ। और फिर वो शेर उसने तो मुझे मतलब सबसे ज़्यादा प्यार दिया, पहचान दी। तो वो गजल में अगर चाहे तो
1: जरूर जरूर एक स्वागत मिलेगी। बिल्कुल,
0: जो पंकज जी ने गाई उसकी धुन अलग है
1: आपकी
0: धुन। हाँ, मैं और जो मैं सुनाता हूँ और जो मुझे चारों पर

डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का बना, होने से डरता है, ना हरता। ये खास कह रहे हो,

0: फिर और सुनाता हूँ जरूर सर। ये बच्चे वाला जो शेर है उसको कितना ज्यादा प्यार मिला
1: जी,
0: ये शेर भी उतना ही सच्चा है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि हर जिंदगी में हर इंसान की कभी न कभी वो पल आता है कि वो ऊपर वाले से पनाह मांगता है,
1: बिल्कुल
0: बहुत बहुत हो गया, अब भी है, अब नहीं, बहुत हो गया
1: जी,
0: है ना, ये आता है
1: सबके पास। सबके
0: हर पति खर पति भी खुद खुश करके उनके पास क्या नहीं होता
1: जी,
0: लेकिन वो जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आते कि वो बहुत हो गया। लेकिन जब ऐसा पल आता है
1: तो आपके पे जो भी
0: तो हमारे क्या रिएक्शन होते हैं।
1: वाह,
0: और कोरोना में तो हमने देखा ही कैसे जान बचाते थे सुनते थे हम लोग, तो ये शेर है जो सबका सच है।
1: वाह,
0: अभी रो गरीब सब पर जहा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया कह इंसान, अजब ये जिंदगी की कैद

0: बुद्ध गए हैं और हजारों लोग बाहर तो हमने संकट की आवाज में सुनी होगी, और जब आपके साथ काम करते थे तब तो हिम्मत ही होती थी कि बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अनमोल पल है। रेडियो की तरफ वापस लौटते हैं और जलंधर में एक साल बिताने के बाद आप कहाँ गए? मैं अपने होम टाउन जयपुर जी मेरे साथ ये भी रहा और अभी भी होता ही है क्योंकि मैं शुरू से होम सिख रहा हूँ।
1: जी बिल्कुल,
0: जलंधर मुझे कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा शहर था, बहुत प्यारे लोग थे, अच्छा खान पान था, अच्छा मौसम था, सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था, केंद्र भी बहुत अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, मैं खुश था, सब भी था। लेकिन एक होम सिख ने सोची कि वो मुझे अपने शहर जाना है वापस, उसको तो मतलब मैंने रिक्वेस्ट की और खुली गई मान ली और मैं वापस अपने शहर में आ गया जयपुर। मैं वहाँ पर वापस शायद 5 साल जयपुर रहा।
1: तो ये बहुत ही अनमोल पल रहे होंगे कि जिस स्टेशन में आप बतौर कैजुअल आया करते थे वहाँ आपकी वापसी होती है और अब आप प्रोड्यूसर बनते
0: हैं। और ये भी सवाल थी कि जिस केंद्र में मैं कैजुअल के लिए ऑडिशन देने गया हूँ
1: बिल्कुल,
0: वही मैं स्टूडेंट एक्सपीरियंस तौर पर एंटर हो रहा हूँ और गाइडिंग के लिए सब कुछ है। तो और क्या टीम थी वो वहाँ?
1: बिल्कुल
0: जी, बड़े लोग, अच्छे लोग, अनुभव था। और मुझे जयपुर मेरा क्रिएटिव जैसा विभिन्न भारतीय जरा बाद में हुआ
1: जी,
0: और उसमें मैंने प्रोडक्शन कम किए लेकिन प्रोग्राम जो परिकल्पना उनको संभालना या उनको एग्जीबिट करना ये सब मेरा क्रिएटिव जो बेस्ट था
1: जी
0: वो जयपुर में था।
1: जी जी जी,
0: नाटक लिखना, कंपोज करना,
1: बिल्कुल
0: प्रोड्यूस करना, इंटरव्यूज करना, वो सब जयपुर हुआ। बताओ, वो मेरी जो पूरी जलंधर में मुझे आकाशवाणी की जानकारी कब हुई तो कुछ लिमिटेड काम था, ये हिंदी का कार्यक्रम अधिकारी था, हिंदी का लिमिटेड सब कुछ था। जयपुर में ये पूरा खुला मंच था
1: बिल्कुल, और फिर आप उसके घर में बने बड़े थे,
0: खुला बड़ा था। और फिर उसने मुझे मैंने कहा कि मेरे क्रिएटिविटी के सारे पहलू उसमें खुले
1: जी,
0: मेरा लेखक भी खुला, मेरा संगीतकार भी खुला, मेरा सुंदर एक विद्युत भी तो उसका था, सब नाटक लिखे, निर्देशित किए, संगीतबद्ध किए, अब म्यूजिकल शो पूरा उसमें हुआ, अभी तो नहीं हो रहा है उसमें जयपुर में और जयपुर के पूरे आकाशवाणी के दौर था कि वो आमंत्रित श्रोताओं के सामने कॉन्सर्ट होते थे, तो उसके लिए भी मतलब तैयार करना, उसके लिए प्लेन लिखना तैयार करना, गाने लिखना, ये सब जयपुर में हुआ।
1: वाह, क्या बात है। तो उस दौर में कौन से नाटक आपने रेडियो के लिए बनाए, उनको कुछ याद कीजिए?
0: उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है राजेंद्र यादव की कहानी से टूटना,
1: जी जी,
0: उसका मैंने रेडियो नाटक रूपांतर किया।
1: वाह,
0: और उसको ले किया और बहुत पसंद किया गया लोगों द्वारा। और ये तो हुआ टूटना, ज्ञान प्रकाश शिवे की कहानी से अंधा सूरज,
1: क्या बात है,
0: उसका किया।
1: वाह,
0: और इसके अलावा गीत गोविंद और एक गजब, ये मेरी लिए सबसे बड़ी बात उपलब्धि थी। जो उसके आश्चर्य की बात ये थी कि गीत गोविंद का आपने डायबिटिक नाट्य रूपांतर किया, वो नाट्य रूपांतर तो हिंदी में हुआ, उनका कैरेक्टर जो राधा कृष्ण शक्ति ये सब कुछ गीत गोविंद मूल रूप से संस्कृत में है,
1: बिल्कुल
0: जय जय गीता
1: जी,
0: हाँ उसके जो गाने हैं उसके जो गीत है वो मूल संस्कृत में, मूल संस्कृत में मैंने कंपोज किया, रिकॉर्ड किए, गाए
1: संस्कृत में,
0: संस्कृत में।
1: और
0: तो गाने संस्कृत में है और उनके इंटरप्रिटेशन करते हुए उनको इस तरह समझाने के लिए मैंने कैरेक्टराइजेशन किया कि लोग आम लोग समझ चुके कि इस गाने का क्या मतलब है, क्या कहा गया है, इसमें कौन कैरेक्टर है, ये राधा का दुख है, ये कृष्ण की पुकार है, ये
1: तो बहुत मुश्किल काम है।
0: हम बहुत उससे वही एक मेरे लिए वो नील का पत्थर जैसा हुआ और लोगों को भी हैरानी हुई कि लोगों ने उसका आनंद भी लिया, समझे भी, मतलब गीत गोविंद को रीजन, क्योंकि मेरा ये समझता हूँ उससे पहले गीत गोविंद रघुनाथ पारिक गई उड़ीसा में
1: जी,
0: वो करते रहे और वो उनका बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, उसका कुछ है तो लोग गायक के रूप में वो पॉपुलर है वो वहाँ पे, लेकिन मैंने उनका सुना है और वो तो कमाल है, मतलब वो भी लेकिन मुझे ये लगा कि उनमें वो लोक तत्व ज्यादा है, मतलब कि बंगाल या उड़िया का उनके कम्पोजिशन में भी उनके गाने में भी, तो

0: इन फिल्म का तो भाई साहब सुगम संगीत के तौर पर मैंने उसको कम्पोज किया और गाने वाले बहुत अच्छे थे। तो इस तरह से वो लोगों को लगे कि गाना है, क्या बात,
1: ये तो बहुत मुश्किल है।
0: तो वो गाने के तौर पर वो हुआ और लोगों ने सुना पसंद किया।
1: वाह वाह वाह, ये पूरा
0: अभियान शकुंतल
1: जी
0: कालिदास का, तो वो मैंने रेडियो एडोप्रेशन किया। वाह, तो ये दो बड़ी
1: शानदार बातें हैं, ये तो बहुत मुश्किल वाले काम आपने वाला किए।
0: इसके अलावा वहाँ विकल्प भी चलता रहा आपका समूह नहीं विकल्प, ये डीजे दौर मेरा पहला था, रेडियो आने से पहले का था।
1: हाँ,
0: विकल्प अपने वजह से चलता रहा, डीजे तो हम लोग करते भी रहे लेकिन वो सक्रियता नहीं रही
1: जी, क्योंकि रेडियो में आप पूरी तरह से अपने आप से अपने आप को जोड़ गया था,
0: मतलब डीजे जो हम करते रहे ना थे लेकिन वो जो 10 साल लगातार जो किया वो रेडियो में आने से
1: जी, और बाद में फिर आप पूरी तरह से रेडियो में व्यस्त हो गए।
0: हाँ, उसके बाद भी एक नाटक जो आला अक्सर बुद्रा का
1: जी
0: जो गूगल का नॉट इन दिल्ली में उन्होंने किया, तो उसका भी मैंने कम्पोजिशन भी किया, कलेक्शन भी किया।
1: तो संगीत जो है वो एक तो घर से मिला था लेकिन ये एक लगातार चलता रहा कि कम्पोजिशन भी करनी है आपको लगातार।
0: हाँ, तो इसमें करने वाला बात नहीं था, मतलब
1: जरूरत
0: से होता था
1: जी जी,
0: अंदर से होता था कि ये मैं करूँ, मतलब मेरी कोई मजबूरी नहीं थी
1: बिल्कुल।
0: हाँ, कि कोई और भी कर सकता था लेकिन अंदर से पता ही होता था कि ये हाँ इसको जैसे लिखने का जो अंदर से होता
1: बिल्कुल
0: आप, तो उसी तरह से वो क्या वो गीत गोविंद हो जयपुर में उस वक्त 5 म्यूजिक कंपोजर भी सोच होती है
1: बिल्कुल
0: है ना, जानते हो और गोविंद दौर में नहीं है वो लेकिन मेन सेंटर बॉम्बे में हो या किसी भी सेंटर में कंपोजर की भी पोस्ट होती है
1: जी,
0: ये सब 4 मौजूद थे और वो 4 लोग भी परेशान होते थे कि हम हैं और ये आदमी कंपोजर। तो उसमें मेरे उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे गिरीश चतुर्वेदी
1: जी जी,
0: तो उन्होंने मुझे छूट दी
1: कि नहीं नहीं आप करो।
0: हाँ, मतलब ये होता नहीं है
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो 4 कंपोजर यहाँ स्टाफ में मौजूद है और उस वक्त आप अपना काम खुद कर रहे हैं
1: जी जी,
0: तो उन्होंने छूट दी और उसकी वजह से वो पहले कंपोजर भी रेडियो पर मतलब फिर गाने भी हुए सब कुछ हुआ।
1: हाँ,
0: एक बार मैं बताऊँ कि जब महादेव वर्मा का गीत
1: हाँ
0: मैं नहीं भरी खूबसूरत नहीं और ये सब मतलब ये सब हमने किए, मतलब जो एक वो जैसे यहाँ मंथन शुरू हुआ था
1: जी,
0: हम लोग 10 मिनट का प्रोग्राम होता था
1: जी,
0: एक अच्छा गीत या अच्छी कविता
1: हाँ
0: इसके लेके उसको भी पढ़ता था और गीत होता था कोई गुलाब कर जाता था।
1: वाह,
0: तो उस तरह का प्रोग्राम तो वो मैं करता था, तो उसमें महादेव वर्मा का और भारती जी का फिर बाद में राहिर की गजलें कंपोज की,
1: वाह वाह,
0: कबीर को कंपोज किया, उसको स्टेज किया, स्टेज को किया, तो ये सब मेरी संगीतकार के रूप में मेरे
1: ये चीज़ें चलती रही लगातार। ये बहुत अद्भुत बात है, ये गलत पूरा एक पक्ष है, हमारे सुनने वालों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि आप मंच पर तो गाते ही हैं लेकिन आप अपने निजी जीवन में भी कुछ निजी गीतों से आपका बड़ा लगाव है जो आप गुदगुदाते हैं, तो हमारे लिए कुछ गुदगुदाएंगे।
0: चलिए उसमें गुदगुदा देता हूँ, कभी कभी मेरे दिल में खया

ख्वाबों की मोर, नीलों भटकता है मन बेसबब, खोई खोई आंखें, बहका बहका ख्याल, और सभी शख्स मोहब्बत पर कायम रहने वाले।

exactamente,

में कुछ गुलाबी चाहिए, कुछ और गुनगुनाना। दौर में कौन सुनता है खामोशी की सदा।

बताना जिससे रोशन होते थे अपने ख्वाब, जब पूरी कायनात अपनी सी लगती थी, जब हर सुबह हरे रंग के कोपल खिलते थे, खिले हुए गुलाब को देख कर मुस्कुरा कर बच्चे ही चलती थी। सब कुछ तो है

की खूबसूरत नजमें आप सुन रहे हैं प्रदेश भारती से। मुकेश की आवाज में गीत आपने सुना आनंद फिल्म से। योगेश के लिखे बोल और सलील चौधरी का तहरीर।

的日子，他马在阿斯方面的任何一次，他在方面的不在意，他在方面的

साइट में के अंतर्गत हम आपको नेशनल इनोमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी कम दे सकते हैं। आपके बारे में जो जानकारी की आपका परिवार पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं यह पोर्टल या 15 मई 2026 है तो खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारे पास हिस्सा है। हमारे बोलो को सुनने का भविष्य और सठीक योजना निर्माण के लिए

हैं। जिंदगी जीवन की परिक्रमा बहुत गहरा है। क्या है जिंदगी, समझाना समझ पाना बेहद मुश्किल है। जिंदगी एक पहेली है जिसे बूझ पाना कठिन है। फिल्मी गीतों में भी

পদ বাড়ার ওদের

with the chapter.

समाचार संध्या का समय होगा। रात 45 मिनट से रात 9 बजे से सुनिए। आपके लिए

a service, that's a basis of this.

speak fluent Aram Tamil Tamil.

0: स्थान लाभ कर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीद के लिए जो फसल लिया गया उसमें जितने भी खरीद के क्रॉप से है और सब में कॉस्ट प्लस 50% या 85% टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीद प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।

उपयोग से फर्टिलाइजर वगैरह में, ऐसी फर्टिलाइजर के लिए एलएनजी नहीं इम्पोर्ट करनी पड़ती है, वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटलाई स्कीम के लिए रखा गया है और करीब

देखिए हम आज ऑस्ट्रेलिया से ग्यारह और अमेरिका से तीन और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 157 एंटी के पीस को आइडेंटिफाई करके अंदर अमेरिका के साथ करते थी यूएस एनफोर्समेंट एजेंसी ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सपोर्ट कर दिया। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 157 एंटी के पीस के

पूजा कैदी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को

people.

your life.

से और ऊर्जा का एक जखीरा खोलती है। उनके गीतों के तहरीर उनके हुनर का बखान करती है।

कुड़ी और मोहिनी अट्टम जैसे नृत्य शैलियों की तालीम दी।

gente que acha que a gente

पर एक खाली शरीर में टूटे हुए सपनों और टूटी हुई रूह के साथ जीना पड़ता है हमेशा के लिए। रूह बेजान हुई जिस्म भी राख हो गया, रूह बेजान हुई जिस्म भी राख हो गया, तेरे बाद मेरा हर लम्हा हक हो गया, तेरे बाद मेरा हर लम्हा

सबसे बड़ा दर्द दे जाता है। एक ऐसा सन्नाटा छोड़ जाता है जो सारा उम्र आपके साथ रहता है, भीतर और बाहर। सबसे बड़ी यातना वही है जब कोई तुम्हारा सब कुछ होकर

हर सुख हर पल हर सन्नाटे में हमें भीतर ही भीतर तोड़ देती है, भीतर ही भीतर तोड़ देती है।

कभी किसी के नदी से बढ़ता है न मन से बनता है। दिन टूट फूट जाता है, जिंदगी बेरंग सी नजर आने लगती है और जिंदगी का सफर तेरे मेरे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर सुनसान रास्तों की ओर चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। बेहद त्रासद वो इन दिनों बीमारी लोगों ने खोजना खुद को, पता नहीं कब छूकर जिसे जागेंगे एहसास, लंबी बेहोशी के बाद पता नहीं कब टूटेगा ये सन्नाटा, पता नहीं कब टूटेगा

को सब कुछ लगने लगता है और फिर जैसे सब कुछ खत्म हो जाता है, वो बात जो शुरू होनी थी शुरू ही नहीं हो पाती, वो बात जो हम कहना चाहते थे

कर जाते हैं कुछ लोग और आप दबे कुचले से उस नुकीली चुभन को सहते चले जाते हैं, सहते चले जाते हैं। तब लगता है जैसे हर लम्हा ढल रही हूँ मैं, रात बनकर उतर रही हूँ मैं, जिंदगी जी रही हूँ या जिंदगी को कुतर रही हूँ मैं। हो सके तो मुझे इकट्ठा कर, हो सके तो मुझे इकट्ठा कर लफ्ज़

strength.